ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, कसम विसारे ते कमजात, नानक नाम है बासनात, राग गुजरी महला चौथा।

प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदि अंत्य कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रीठ सब तारे, आपे अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद पेद अरे आलम।

ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछु भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्त न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहबित सजा प्रथम संसारा। एक है रूप वनूप स्वरूपा रंक पयो राग कई पूपा। अंडज जे रज से तज कीने उत्पुज खान बहुर रच दीने। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंपव आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे असिख संगरु। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वस कह न कोई। एक बार जिंत में संभारा काल फांसते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हां दे ले उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया

कहें मातेक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बोपेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहियो सब तो ए बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाजवास गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा नंद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरी केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्ला सम्राट स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले साचे साहिबा, क्या नाही करते रह। घर ता तेरे सब किश है, जिस दिन सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारु। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

उचेते ऊचा सगल समगरी तुमरा सूतर तुमते हो ऐसो तुमरी गात मेत तुम्हें नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदावे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजाद्या चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारिया नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। तेग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण। नितानिया दे ताण निवटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखद्या शब्द चौंकी उपरंत सो दर रहिराज साहिब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए। समुची सेवा निभाउंदिया होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगाह तों समत बख्शिश करनी। समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दियां बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां। दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दियां दातां। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਾਧੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇ ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याई। आन दिन सो कृत करिय रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। को वड भागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे। हार चरणी चित लाए, ओस्तत करो सदा प्रभ अपने। जिन पूरी कल राखी, जी जंत सब पे पवित्रा। सतगुर की सच साखी, बिघन बिनासन सब दुख नासन। सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पे सब पावन। जन नानक सुख कर आया, बिघन बिनासन सब दुख नासन। सतगुर नाम दृढ़ाया,

गुर कै शब्द आराधिय, नाम रंग बैरागो, जीते पंज बैराइया, नानक सफल मारू एह राग। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनवाई, प्रगट पई सगले जोग अंतर।

गुरु के खालसा जी पटियाले वाले ने ये वार्ता तुहाडे सन्मुख रख रहे हैं। सरदार आला सिंह दा पोतरा ओदा कहां पुत आला सिंह दा पड़पोतरा सरदार सैभ सिंह सारे राजियां नू अपने महल विच मोती बाग विच सद के ये बंगार पा रहा।

राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय, अन्न दिन सुकृत करिय रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। उस

जंत सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बिनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया।

भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सतगुरु साहब जी दे सजे हुए आलमाना दरबार दियां हाजरियां भर रही, गुरु हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत, गुरु साहब जी की बख्शिश सदका सजे हुए दरबार दियां दीवान दियां हाजरियां आप जी भर रहे सी। धन्यवाद है गुरु सवारे सत्कार ढाडी जथे का, माणयोग ज्ञानी जसवंत सिंह जी जोश अते उन्हां दे समुचे जथे का, जो आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास सरवण करवा रहे सन। गुरु चरणा दे विच दीवान दी समाप्ति की अरदास, संपूर्णता की अरदास, सरबत दे भले की अरदास हुई है, तो बख्शिश स्वरूप पावन हुक्मनामा गुरु साहब जी ने बख्शिश किया है। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तिन्हां दी मुबारक पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया। मुबारक शब्द आप जी ने मुख वाक हुक्मनामे के रूप के सरवण किया है। गुरु पातशाह मेहर करन बख्शिया होया पावन उपदेश साडे जीवन का आधार बने, ये गुरु चरणा में अरदास और ये ही सजे दवान की संपूर्णता है, समाप्ति है। तो गुरु प्यारियो, कल रोज़ नूं 3 श्री अखंड पाठ साहब गुरु चरणा चो वरसाईआं होईआं संगतां, नगर निवासी संगतां, सेवादारां वल्लों जो आरंभ करवाए जाने ने गुरुद्वारा साहब के 3 दिन प्रवाह चल रहे हैं, तो आप जी ने आने वाले दिनों में इस तरह हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने रौनकों नूं वधाउणा। तो आओ हुण दीवान दी सजे हुए दीवान दी इत्थे संपूर्णता है, कड़ा प्रसाद दा वरतारा हो रहा है। आप जी जिन्हां ने प्राप्त नहीं किया प्राप्त कर सकते हो, उपरंत गुरु का लंगर आई हुई समुची संगत वास्ते तैयार है। सब ने आपू अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी। सुखासन दीयां सेवावां दे विच वैसे अगे भी बहुत वारी बेनती की है, पिंडां थावां दे विच आम तौर पर यह उत्साह बहुत वड्डे पैमाने पर वेखण नूं मिलदा सी। इत्थों पहलां होर भी बुलारियां ने यह बेनतियां आप जी के चरणों में कीतियां ने, वेखण विच आउंदा है। बहुत वार इंज हुंदा है जदों खास करके वीकेंड के दीवान हुंदे ने ना, तो मान लो परिवार वालों सुखमनी साहब के पाठ होए, हाल भरिया हुंदा खचा खच, तो बहुत वार इंज वेखण विच आउंदा है कि संगत ज़्यादा हुंदी है, कई बार सेवादार घट हुंदे है। पिंडां थावां दे विच नौजवान मार के छाल उठ खड़े हुंदे, इधरों लड़कियां वाले पास्यों, भैणां वाले पास्यों नौजवान भैणां उठ के खड़ियां हो जांदियां, बीबियों वाले पासे प्रसाद उन्होंने वरता देना, नौजवानों ने हंबला मार के नौजवान वाले पासे प्रसाद वरता देना। पर इतने असी तकरीबन वेखते रहे हैं वलंटीयर अपने आप को पेश नहीं करते। जदों आपां गल करते हैं तो फिर बहुत बार इंज हुंदा है कि मन में एक हिचकिचाहट होंगी है कि सेवा करिए जां ना करिए। तो चंगा कार्य करना होवे कदे भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बस अपने आप को पेश कर दो। माड़ा काम करना हो, गुरु साहब कहते हैं नह बिलंब धर्मं, गुरु अर्जन साहब का उपदेश है सहस्कृति श्लोकों के, कहते ने देरी धर्म का काम करने कदे नहीं करनी चाहिए। चंगा काम करना हो कदे देरी ना करो, किसी पुछण की लोड़ नहीं। नह बिलंब धर्मं, धर्म का काम कर लगे कदे देरी ना करो, पर जे कुछ माड़ा काम करना हो जरूर सलाह लै लो सियाने बंदे दी भी करिए जां ना करिए। चंगा काम कर लग्या नहीं सोच विचार नहीं करनी चाहिए, बस उठ के खड़े हो जाओ करो। तो इस तरह जो ये सुखासन दियां सेवावां हुंदियां ने, नौजवान बच्चे स्टूडेंट ही है, अपने काम कार भी करते हैं, कार विहार भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, सेवावां भी कर, तुसीं भी सारे करते हो, पर जदों ये सेवावां हुंदियां तो ये बेनती मैं तां कीती भी गाहे बगाहे जदों समां बणदा सुखासन की सेवा, कड़ा प्रसाद वरताउण की सेवा।

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਮੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਜਾਤੇ ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵਾਂ ਦਿਨ ਨੀਤ ਕੋਲ ਕਵਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗੀਤ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰਿਆ ਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਤੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਕੋਈ ਨਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਜਪ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾ ਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ ਇਹ ਮਨੀ ਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾ ਮਥੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ
पावन पाती तृप्त कर। पूजा प्राण से गुजे सेव इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारे अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंप हौसला ही सचा सोई। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारे अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंप हौसला ही सचा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंगुर प्रसाद राग सूही महला पहला चौप दे कर पहला। भांडा तोए बैस धूप देवो तो दुदे को जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायण होए नरास जमावो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। हर नामो मन दड़ाइंदा कटे हमे रोग। नानक सतगुरु तनम लाया जन तुरे पिया संजोग। नानक सतगुरु तना मिलाया जिन तुरे पया संजोग। रा गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुवारे दी इक ओंकार सतनाम करता पर गुर प्रसाद। निद सिद्ध निर्मल नाम बचार पूर्ण पूरिया बेखमार। त्रिकुट छुट्टी बिमल मजार गुर की मर्जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चकाया। लाल पै सुबह रंग माया नजर पई बैठा रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवाई मन हर सिं लग गया। रास संग्रह बेपर त्याग गया पाए बस जम का पो पा गया। साध रहे बाद हंकारा चिता सुराता हुक्मा पारा। जात रहे पद के आचारा दिष्ट पाई सुगात मुतारा। तुझ मन को न देखो मीत के शिव के देवो चीता। केस पूछू केस लागू पाए केस प्रदेश रहा लिवलाए। गौर से भी गुरला गो पाए पद गिरी राचो हर नाए। सीखे देखिया पूजन पाओ मुझे हुक्म संजोगी निरक निज कर जाओ। गर्भ गंत सो त्याम त्याना जोत पई ज्योति माए समाना। लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नै पंडा नै चल सियाणा नै भूलो नै परम पलाना। करो न कते हूं पछाऊना नान गुरमो साहे पछमाना। गौड़ी गुआरे मल्ला पहला मन कंचन मन कुंचन काया उद्यान। नानक गुरमत सहज समाना। मन कंचत मन कुंचन काया उद्यान। गुरे अंक सशम निशाने राज द्वारे सो सुमाने। चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। अमृत कर में अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोय करे। राखे आवड़ियाई दे नील अनिल अगन किठाई।
जालने वरी गुर बूज बजाए मन दे लिय रस गुण गाए ऐसा कर बास हो तैसा बैस गुव आखो कैसा सागर डुरबो निर्बो ऐसा मुए को मारे कौन न डरे को कैसा डर कौन सब पछाने तीने पौन जिन क्या तन कहन बखाने जिन बूझे तिन सहज सब पछाने देह बचार मेरा मन मनया कीरत सूरत मुग कनाई तई नैन रिया समाई निज कर ब्याह भरिया निठाई उत करे के ते मन प्रीत तन मन सुचे सा सुचीत नानक हर भज नीता नीत गौड़ी गुआरी महला पहला ना मन मरै ना कारज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन माने गुर ते कोए निर्गुण राम गुणों वस होए आप निवार विचारे सोए रहाओ मन भूलो बोच दे वकार मन भूलो सिरा व्यापार मन माने हरे कंकार मन भूले माया कर जाए काम बरुदो रहे न ठाए हर भज प्राणी रसन रसाए कैवर हैवर कंचन सुत नारी बोचिंता पिरचाले हारी बोचिंता पिरचाले हारी जुए खेलन काची सारी संपो सची पै वकार हर कसोग उबे दरबार सुख सहज जप हृदय मरार नदर करे ता मेल मलाय गुण संग्रह गुण शब्द जलाए गुरबना पदार पाए बिना शब्द नवास मन मुख मूड माया चित वास गुरम ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचलता उत्पन्नता वे सचे सुचे मैल न पावे

हरे महादिवस मूरत पलै जिस को नदर करे नानक मंग दस दाम कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो जेठ का महीना आरंभ हुंदा है, आप सरबत संगतां दा सुख नंदा बतीत होवे। सो आओ हुण आसकी वार दे कीर्तन भाई साहब भाई हरजीत सिंह दिल्ली वाले जिथे पास श्रवण करिए जी। अज दो खंड पाठ आरंभ, तीन खंड पाठ आरंभ होणगे, परिवार नूं बेनती दर्शन देने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

देखा कर समझाया, थाओ ना पाइन कूड़े यार मोहकाले दो जग चाले पौड़ी अपी ने भोग भोके हुए पसमन पौर सुधाया। वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल का चलाया, अगे का नी किरत बचिए बैलेखा कर समझाया।

0: आहार शर्म तर्म का डेरा दूर, नानक ओढ़या परपूर।
1: मथे टिक्का तीर तो टिक्का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई।

करणी कामण कर मान ले। साहा संजोग विया विजोग सच संतत कहो नानक जोग। हमारी प्यारी अमृत धारी

हमारी प्यारी अमृत तारी गोर नमक ना मन ते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खेन राम गोर काम हर दाम नह जाम हार कंठ नानक और हारी रे। धन वाहिगुरु साहिब जी। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगै सब निवान, हार सजन दावन लगिया, किसे ना दे बन। हार जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगै सब निवान, हार सजन दावन लगिया, किसे ना दे बन। माणक मोती नाम प्रभ,

जित मन पावनो, जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करना, जो प्रभ कीते अपने से कहिए तन्ना, आपन लिया जे मिले

0: दस रहे पसों कीर्तन दियां इतनिया हाजरियां प्रवान करनिया जी। गुरु का कीर्तन कर दिया तू बेअंत पुला हो गया होनगियां। साध संगत बख्शन हार है, गुरु पातशाह बख्शन हार हैं। हुण बहुत ही सत्कारयोग ढाडी जथा भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी जोश, वो आप जी नू जो ढाडी वारा अते गुरमुख इतिहास दी विचार सरवण करवाउणगे। हुण बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी जगदीश सिंह जी अगला प्रोग्राम दसणगे, आप उन्होंने पासों सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। हार्दिक धन्यवाद भाई साहब भाई दरबार सिंह जी तो उन्होंने जथे का जिन्होंने आप जी ने लाही बाण के मनोह कीर्तन सरवण कराए ने। गुरु कृपा करे इन्होंने चढ़दियां गल। अज जेठ जुड़न का लोहड़ी है जिस अगे सब नवाना, जेठ का महीना आरंभ हुंदा। सो आप संगत सतगुरु कृपा करे महीना सुख आनंद का बतीत होवे और बख्शिया उपदेश सर्वस संगत हिरदे दृढ़ हो सके। और आप कोशिश करिया करिए कि पिछले महीने की विचार नूं नाल सांझियां करदे आ थोड़ा जिहा। इस महीने कोशिश करिए जिहड़ा पिछला उपदेश सी कि उह आपां अपने हिरदे दृढ़ करन दा यतन कीता। चेत गोबर अंदर आदि होवे विसाख धीरन क्यों वाढ़ीए जिन्ना प्रेम विशो। ते जे आपां सिर्फ एक महीने का नाम ही सुनना तो उस तों बाद कदी इहदी विचार ही नहीं करनी कि महीने का उपदेश की है, फिर तो सुनाई जाने सुनी जाने हो रहा किया जा रहा पर निकल की रहा। साड़ी हाजरी इत्थे बैठना साड़ा आना साड़ा धार्मिक तौर पर सारा कुछ सुनना कि आप घड़ी घर च भी जाके गल की अज मैं गुरुद्वारे आ सुन के आया। हो सकता कितने सत्था च बैठे होइए तो किसी दी गल्लां जरूर कर करिए फलाना आ कहिंदा सी, पर आप कभी इतने कोशिश की है भी अपने घर च विचार करिए भी भाई अज जिदा भी कुछ हो रहा है कारण की है। इन सानू घोखण का यत्न करना पैना, सानू सानू जिनी भी कोशिश की जा रही है गुरु ग्रंथ साहब तो दूर करने की कोशिश की जा रही है, साढ़े च फुट पाई जा रही है, सानू वंडिया जा रहा अज तो नहीं ये बड़े चिर तो शुरू तो ही। सो इस करके कोशिश करो कि आप गुरु का एक ही हुक्म मान लीए, अज संगरांद वाले दिन कोशिश करिए एक बचन ही मान लीए कि सब सिखन को हुक्म है गुरु माने हो आप यो मान लीए से फिर तो सैर साडा पार उतारा हो जाए क्योंकि आप गुरु बड़े धारण कर रहे हैं। मैं लगता उन्हें सिख नहीं जिन्हें गुरु बन गया, उदों तो बाई मंजिया सी ना तो मक्खन शाह लवाणे ने कहा भाई मैं गुरु लभदा लभ जाए। अज असी उन्होंने मंजिया लभण की बजाय असी मंजिया होर पैदा करी जा रहे हैं, एक बाबा लड़ता दूजा डेरा बढ़ जाता। इस तरह गुरुद्वार की हालत भी यह जी है, एक और प्रधान बनिया दूजी नहीं बनिया तो नवा गुरुद्वारा। सो आप इन्ह चीज़ों थोड़ा जहा सोचन का यतन करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद अज जेठ का महीना आरंभ हों इस उद्देश समझने की यतन करिए। सो नाले बेनती है कि तीन खंड पट आरंभ हो गए ने, ऐतवार को भोग पैणगे परिवार वालों बेनती दर्शन देने। अज शाम 6 बजे पग भी बननी सिखाई जाएगी, किसी बच्चे ने जां किसी ने भी सीखनी हो बेनती 6 बजे अपनी पगां लैके पहुँच जाए। हुण आओ भाई जसवंत सिंह जी जोश दा ढाडी जथा ढाडी वारां ते आसरण कराउंगे, उस तों बाद अखंड पाठ जो आरंभ ने वह लाइव जिहड़े आ रिले कीते जाणगे 4 बजे तक। 4 बजे अगला प्रोग्राम जिहड़ा शुरू हो जाएगा। आओ बड़े प्यार नाल सम करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अस उचो पर्वत गा खड़ो ना पौड़ी तितास गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास पाई रे पवजल बिकमंडराओ पूरा सतगुर रस मिले गुरतारे हर नाओ राओ चला चला जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सुगर करतार पी सच्चा सो लाहना सच्चे तन प्यार दर कर मैला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लस्कर लाखे अपार कैसी नाल न चलिया खप खप मुए असार सोइना रूपा संचिए माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरी है बेनावे सरकाल पिंड पड़े जो खेल सी बद पहली क्या हाल पुता देख वगसी है नारी शेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप सिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले कर बार मैर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिए अभिमान मनमुख नाम विसारिया जो डबदा कान होमे कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुहाए गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाए नानक तरिये सच नाम सिरा सहा पत साहो मैं हर नाम न विसरे हर नाम रतन वे साहो मनमुख पौजल पचम गए गुरमुख तरे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना नित चलने की तोख मकाम ता पर जानिए जा रहे नेचल लोक दुनिया के इस मकाम में कर सिद्ध करनी खर्च बांधो लाग रहो नामे राओ जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मकाम पंडित वखाने पोथिया सिद्ध बह देव सदान स्वर सिद्ध गण गंध रंभ मुन जन सेख पीर सलाहा दर कूच कूचा कर गए अबरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच करी मोत के चलना दिल समझ तू पी पूछ शब्दाहे माए वखानिए विरला तबूजे कोए नानक वखाने बेनती जल तल मेल सोए अल्लाह लख अगम कादर करनहार करीम सब दुनिया मन जावनी मकाम एक रहीम मकाम तेसनो आखिए जिस न होवी लेख असमान तरती चलसी मकाम ओही एक दिन रव चले निस्स चले तारक लख पलोए मकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारहां अष्टपतियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपतियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन गुर भगत न होए आपे आप मलाए बूजे ता निर्मल होवे कोए हर जो सच्चा सच्ची बाणी शब्द मिलावा होए पाई रे भगत हीन काहे जग आया पूरे गुर की सेव नकीनी बिरथा जन्म गवाया रहाओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मलाए जी जनते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आखे दे वड्याई आपे सेव कराए देख कुटंब मोह लबाना चल दिया नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई पेयेडे जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मंग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई पेयेडे जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अंधन भगत करे दिन राती होमे मोह चकाया जिस्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया आपे नजर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेविए सहज उपजे होमे तृष्णा मार हर गुण दाता सत मन वसे सच रखिया उर तार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए
ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ,

वदंती श्री राग महल्ला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा निभे तेरे नाले संग सहज नाम ते आई बिरथा कोई न जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रिया बनवारी कट कट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग परम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा भिकसागर संसारे चरण कमल कर बोहत करते संसार दुख न व्यापे गुरपूरा पेटे वडपागी आठ पैर प्रभ जापे आद जगादी सेवक स्वामी भगत नाम अधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया ज्यो मित्रा अरल देखे बसवली मन प्यारिया ज्यो मित्रा हर दरगे नेचल मल्ली हर दर सेवे लाख अपेवे नेचले आसन पाया तै जन्म न मरन आमन जाना संसार दुख मटाया चित्र गुप्त का कागत पारिया जमदूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हल देखे वसवली मन प्यारिया ज्यो मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारिया ज्यो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच सगली पुनिया पूर्वे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चरी विछन्या अंतर बार सर्वत्र व्या मन उपजा बिसासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारिया ज्यो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया ज्यो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पी अगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन बूठे श्री धर पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लाड़ी ने लाए नौ निद पाए नौ सरबस ठाकर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हंठ मजाओ मा प्री पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभने नानक प्राण आधार संत चरण कमल स्यों प्रीत रीत संतन मन आवे एक किन तीरज क्यों करे नाम विहूना तन मन ही ना जल बिन मछली ज्यों मरे मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संगत मिल गावे नानक के स्वामी तारन ग्रह मन तने अंक समावे डखना सुहंदड़ो हब उठाए कोई न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर पेट ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारिय जियो सिमरत साध ग्रास पूरन विश्वास क्यों मनो बिसारिये जियो क्यों मनो बिसारिये निमक नहीं तारिये गुणवंत प्राण हमारे मन बाष्ट फल दे तह स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाते सर्ब के साथे जब जुए जन्म नहारिये नानक की बेनंती प्रपे कृपा कर पवजल तारिये दखना तूड़ी मजन साध के साई थिये कृपाल लद्दे हबे थोकड़े नानक हर तन माल शंत सुंदर स्वामी ताम भगते विश्राम आसा लग जीवत जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवत जियो अमृत हर पीम दे सदा थिर थीम दे बिखे बन फिका जाने पै कर पाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत नित माने सर्वच्छो सुख आनंद कर प्यारे हर नतन मन अंतर सीव दे एक तिल नहीं विसरे प्राणे आधारा जप जप नानक जीव दे डखना जो तो किन्ने अपने तिनो के मिलियो आपे आप मोयो ओ जस नानक आप सुनियो शंत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोबिंद मन मोया जियो संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोग सब जोया भगत लखन कर वसे मन सर्ब सुख उठे गोबिंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगल गाया इच पचाया बौड़ नमाया हो है कर गैली ने नानक प्रा प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना
साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, जिन्ना पग मथाए से नानक हर रंग मान दो। संत कहते पवित्र सुनते सब तन, लखंती कुल तारिया जियो, जिनको साधु संग नाम हर रंग तीनी, ब्रह्म बिचारिया जियो, ब्रह्म बिचारिया जन्म सवारिया, पूरन कृपा प्रभ की हरी, कर गै लीने अरजस दीने, जो न तावे न मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत, हरे काम क्रोध लो मारिया, कथन न जाए अकत स्वामी, सदके जाए नानक वारिया। श्री राग महला पंचौथा, वनजारा एक ओंकार, सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोय जियो, हर जी सबे प्रित पालदा, कट कट रमैया सोए, सो हर हर सदा त्याये, तिस बिनियावर न कोए, जो मोह माया चित लाइन दे, छे छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए, मैं हर बिन अवर न कोए, हर गुर सरनाई पाइये, बन जारिया मित्रा, बड़ भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना बिन पाइया, हर किने न पाया नाओ, विच होमे कर्म कमाम दे, जो वेसवा पुत नाओ, पिता जात न होई है, गुर तुठा करे पसाओ, वड पागी गुर पाया, हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दड़ाया, हर मिलिया हर प्रभ नाओ राओ, जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए, चलद्या नाल हर चल सी, हर अंते लय छाए, हों बलियारे तिन को, जिन हर मन उठा आए, जिन्नी हर हर नाम न चेत्यो, से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम ते आए, मन हर हर प्रीत लगाए, वडभागी गुर पाया, गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ, हर आपे आप उपाइंदा, हर आपे देवे ले, हर आपे परम पलाइंदा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन परगास है, से विरले के कह, हों बलिहारी तिन को, जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर उठड़ा हे, मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई पज पो जिंदु, सब किलविख दुख पर हरे राओ, कट कट रमैया मन वसे, क्यों पहिए कित पत, गुरपुरा सतगुर पेटिए आए वसे मन चेत, मैं तर नाम आधार हर नामे ते गत मत, मैं हर हर नाम साओ हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत, राओ जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास, सेवक पै बनजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास, तन तन वंज वपारिया, जिन वखर लदड़ा रास, गुरमुखा धर्म खुजले, से आए मिले हर पास, जन नानक गुर तन दिया, जन नानक गुर तिन पाया, जिन आप ठुठा गुणतास, हर त्यावो सास ग्रास, मन प्रीत लगीत न गुरमुखा, हर नाम जिन्ना रह रास राओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा, श्लोकां नाल श्लोक महला तीजा, रागा विच श्री राग है, जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसे, निचल मत्या पार, रतन अमोलक पाया, गुर का शब्द विचार, जिबा सच्ची मन सच्चा, सच्चा शरीर आकार, नानक सच्चे सतगुर सेविए, सदा सच वपार, महला तीजा, होर बिरा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत न होए, एव मन माया मोया वेखन सुन न होए, सह देखे बिन प्रीत न उपजे, अंधा क्या करे, नानक जिन्ना अखी लीतिया, सोई सच्चा दे पौड़ी, हर इको करता एक इको दीवान हर, हर इक से दा है अमरिको हर चित तार, हर तिस बिन कोई नाई डर, परम पौ दूर कर, हर तिसे नो सलाए जे तुद रखे बार कर, हर जिसनो होए दयाल, सो हर जप पो बिखतर, श्लोक महला पहला, दाती साहेब संधिया, क्या चले तिस नाल, एक जगंदे ना लैन, एक ना सुत्या दे उठाल, महला पहला, सिद्ध कसबूरी साधका, सबर तो सा मिलाइका,
दीदार पूरे पैसा था नाई खाए कारा पौड़ी सब आपे तू दे उपाय कह आपे कारे लाए तुझे आपे वेख विकसा अपनी वड्याई हत दो बार किश नाई तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तिसे त्यावो संत जनो जो लय छाई श्लोक महला पहला फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जी आए काशाओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापे ता पत लिखे पाए महला दूजा जिस प्यारे त्यों निहो तसे आगे मर चलिए त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी तुझे आपे धरती साजिए चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तो साजिया व्यापार करी वै इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जमकाल न व्यापे जिस अमृत पीवे ओए आप छुट्टे परिवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुट्टी वे श्लोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचार जे बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए तो कही न जाए सरे सरियत करे विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर जिसता मन कर मकसूद जै तर देखा तै सिमर मजूद महला तीजा गुर सभा एव न पाइए न नेड़े न दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर पौड़ी सपत दीप सप्त सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराना सब हर सपना विच वरतदार सबना पाणा सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुखारे राधे तिन को कर बाना तू आपे आप वरतदा कर चोज बडाना श्लोक महला तीजा कलो मजासनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख दे हो सदा साहब कह रंग रहे कबू न टूट सने हो कलो मजासनी जाए सी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत न जाए सी जो तुर छोटी सच्चे पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल न चली वेखो को वो पाए सतगुर सच दड़ाया सच रियाले वलाए नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जाने पेत जो की जे सुहर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विकसेद तू सच्चा आप न्याओ सच त डरिए केत जिन्ना नानक सच लिखन वाला सच बल्योजन लिखिया दूजा पाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जायो महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक वे नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हुए खुवार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जै न्याऊ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनिए कह चुगल का हर की वड्याई वड्डी है अपुछिया दान देव का श्लोक महला तीजा हो करती सामुई संपो किसे न नाल दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल नानक गुरमुख उबरै साचा नाम समाल महला पहला गली असी चंगियां अचार ही बुरियां मनोक सुदा कालियां बाहर चिटड़ियां रीसा करे तनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां नाल खसमे रतियां माने सुख रलियां ओ दे तन नतानियां रहे नमानियां नानक जन्म स्कार था जे तिनके संग मिले पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच सिबाल तू आपे कमल अल्पत है हत्थां विच गलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख कड़ी कर ख्याल हर तुदो बारो किश नहीं गुर शब्दी वेख नहाल श्लोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसमे चले रजाई डर कर सोभा मैल बलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੁਨਿਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬਾ ਦੇਖ ਨ ਭੁੱਲ, ਇਸ ਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜ ਰਿਹਾ ਛੋਛਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਪਚਮੂਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀੜ ਸੇ ਪਏ ਪਚੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨ ਉਤਰੇ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਪੌੜੀ ਸਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੁਭਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਵਦੇ ਮੂੰਹ ਕੂੜ ਕਸੁੱਧ ਤਿੰਨ ਢਾਇਆ, ਤਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਤਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬਜਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਵਾਇਆ, ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤਿੰਨ ਸਫਲੈ ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਬੇਦਵ ਖਾਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਜਿਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਿਸ ਕਬੂ ਨ ਚੇਤੇ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਰਿਜਕ ਸੁਭਾਏ, ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਗਲੋ ਨ ਕੱਟੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਸ਼ੂਨਾ ਸੂਝੇ ਅੰਦਲੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਭਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨਿਆਏ, ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਸੁਖ ਪੈਨਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਆਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨੋ ਨ ਵਸਾਰੀਐ ਜਿਤ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋ ਬਾ ਪਾਏ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਪਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਮਨੇ ਮਾਏ ਬਿਨਾਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਵਾਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸ, ਸਭਨਾ ਤੁਝ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਾਸ, ਤੁਧ ਬਾਜੋਂ ਥਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਸਭ ਤੁਧੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿੰਦੇ ਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਨੋ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜੀ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਚੀਨਈ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭੂੰਦਾ ਨਾ ਬੂਜੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝੋ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ ਚੂਕੇ ਕੂਕ ਪਕਾਰ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਰ ਸਿਉ ਹਿਤ ਪਿਆਰ, ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਥਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਹਰ ਜਿਸ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈਏ ਹਰ ਭਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਮਨ ਅਟਕਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁੱਛੋ ਵਿਦਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲੈ ਹਰ ਲਾਏ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਸੋਹਣ ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਭੋ ਵਰਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚਕਾਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਜਮਜੋ ਨ ਸਾਕੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੇ ਬਿਨਾਵੇ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ, ਪੌੜੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆਰ ਦਿਬਾਨ ਸਿਉ ਸਭਨੀ ਦਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋ ਸੁਰਖਰੂ, ਉਸਕੇ ਮੋਹ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ, ਉਸੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮੋ।

दुखदारू सुख रोग पिया जा सुखतावना होई। तू करता करना मैं नाहीं जाहू करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या राव। जात मैं जोत जोत मैं जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिवत सवालियो जिन कीती सो पार पिया। कौ नानक करते कियां बातां।